0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद

0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहाँ लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है।

आत्मा बेशक अमर है, पर जीवन चक्कर थोड़ा है। इसलिए अपने सामने एक आदर्श खड़ा करो ते उस प्रति अपना जीवन समर्पित कर।

0: आनंद तुलसीदास।
1: हुणे तुसी सर्वन कर रहे सी भगती संगीत का प्रोग्राम आराधना मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। तो आओ हुण सुनदे आं खेतीबाड़ी प्रोग्राम।
2: खेतीबाड़ी

बेटी की विदाई का दृश्य जितने आनंद और संतोष का अवसर होता है, उतना ही करुण और मार्मिक भी। विवाह के हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के मांगलिक समापन के बाद विदाई की घड़ी आ ही पहुंचती है। श्री राम भाइयों सहित वधुओं की विदाई के लिए राजा जनक के महल में पधारे हैं। उन्हें देखने के लिए नगर के अगणित नर नारी दौड़ पड़े हैं। सखियां इन प्रिय पाहुनों के रूप को आंखों में बसा लेना चाहती हैं। रूप के समुद्र सरीखे सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं न्योछावर हुई जाती हैं। जामाताओं को स्नान भोजन कराया गया, किंतु सारा उल्लास महाराज के अयोध्या लौट जाने का समाचार सुन जैसे उदासी में परिवर्तित हो गया। स्नेह से शिथिल हो गईं माताएं, पुत्रियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाने लगीं। सखियों ने पुत्रियों से बार बार भेंटती माताओं को जब अलग किया तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी जन्मे बछड़े से गाय को अलग कर दिया हो।

4:02 थे, तो सुनोगे पंजाबी फिल्म संगीत। शाम 6:30 तुसी साडे प्राइमरी चैनल ते आईसीसी वूमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 दा दूजा सैमीफाइनल मैच जिहड़ा इंग्लैंड और दक्षिणी अफ्रीका दे विच खेडिया जा रहा है, इहदी बॉल बाय बॉल लाइव कमेंट्री सुनोगे। और देहाती प्रोग्राम तुसी साडे मोबाइल ऐप ते सुन सकते हो। 6:30 देहाती प्रोग्राम दे विच अज तुसी कम दीआं गल्लां, मंडियां दे भाव, मौसम की जानकारी के नाल नाल सेहतमंद लवेरे लई खुराक, ये बाबत डॉक्टर अमित शर्मा होर नाल कीती गलबात सुनोगे। तो नाल ही रुख लगाना, ये वार्ता डॉक्टर रिशि इंदिरा गिल वालों सुनोगे। साड़ी मोबाइल ऐप ते ही तुसी 8 बजे सुन सकते हो प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 10 बजे समा होएगा शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम सुर साधना का, जिदे विच कलाकार BS नारंग शास्त्री गायन करनगे। राग रहेगा बिहाग। ते रात 10:30 प्रोग्राम सरगम। ये सी साढ़े अज के बाकी रहेंगे प्रोग्राम। तुसी जुड़े हुए हो आकाशवाणी जलंधर के नाल, और स्टूडियो घड़ी के मुताबिक इस वेले 6:55 हो रहे हैं। आओ तुहानू लै चलते हैं साढ़े दिल्ली केंद्र, जिथों तुसी सुनोगे समाचार हिंदी दे विच। बस कुछ पल दा होएगा इंतज़ार, ते फिर तुसी सुनोगे समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीयसमकक्षया सानेताकाई चेत्यनया सह वार्षिक शिखरसम्मेलनस्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखरसम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिकसहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिकहिताय क्षेत्रीयवैश्विकविषयेषु विचाराणाम् आदानप्रदानं कर्तुम् अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीययात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकायची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिकयात्रा वर्तते। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धन दिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक सञ्चारपटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति, यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन् मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 AE राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते 6-मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य 4-मार्गीय अभिगमन नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः 6 मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
1: पहला प्रोजेक्ट 6-लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है।

0: विकसित भारत जी राम जी अधिनियमस्य पञ्चविंशत्यधिक 2000तमस्य अन्तर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25 दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदातृसूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरेंट कप इत्यस्य 35,100तमं संस्करणं मासस्यास्य 25 दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। तो आओ थोड़े नाल सांझियां करदे हां हुण तक दियां मुख खबरां। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शाहमार्ग NH 148 AE लई 6 लेन वाली सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसंख्या तब्दीलियां बारे कायम उच्च पदरी कमेटी नूं अपनियां सिफारशां छेती ही सौंपण लई कहा। भारत ते मलेशिया ने कल नवी दिल्ली विच 12वीं सब कमेटी की मीटिंग दौरान दुवल्ले फौजी सहयोग के पहलुआं की समीक्षा की। पंजाब समेत देश भर विच विकसित भारत रुजगार अते आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण कानून लागू हो गया है। पंजाब सरकार वालों कल संगरूर जिले के धुरी तो मुख्यमंत्री मावां धीआं सत्कार योजना की शुरुआत। पंजाब ने वित्तीय साल 2026-27 की पहली तिमाही लई वस्तु और सेवा कर GST की वसूली विच 24.45% का शानदार वाधा दर्ज किया। कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत वालों बागबानी विभाग के कामकाज की समीक्षा प्रशासनिक सुधारा और किसान पक्षी विकास से दिता जोर। पंजाब राज खुराक कमीशन के चेयरमैन बाल मुकुंद शर्मा ने मीटिंग दौरान राशन डिपुआ आंगनवाड़िया केंद्र मिड डे मील की स्थिति का जायजा लिया। अते मौसम विभाग ने अज तो 6 जुलाई तक पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ विच कई थावां ते भारी बारिश बारे येलो अलर्ट जारी किया। इस सन हुण तक दे मुख समाचार। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। तो आओ हुण शुरू कर दें प्रोग्राम। थोड़ा सारिया का अपना सोहनी सवेर।

नमस्कार दोस्तों, नमस्कार श्रोतियों, नमस्कार साढ़े सारे सुनने वालों नूं गौरव दी प्यार भरी नमस्कार जी। एक बार फिर असी हाजिर हाँ लैके प्रोग्राम सोनी सवेर। यो प्रोग्राम है जिदे विच असी रोज़ तुहाडे नाल ढेर सारिया जानकारियां सांझियां करदे हां, तुहाडा मनोरंजन करदे हां और नालों नाल ही बहुत कम दियां

या गल्लां है ना वो भी दसते हैं। तो आज एक नवा दिन शुरू हो गया, नवा दिन नवी सोच। और कहिंदे ने कि नज़र नू बदलो नज़ारे बदल जांदे ने, सोच नू बदलो सितारे बदल जांदे ने, कश्तियां बदलन दी लोड़ नहीं, दिशावां नू बदलो ते किनारे जड़े ने ना वो बदल जांदे हैं। देखो जदों तुसी चंगी सोच रखदे हो ना तां चीज़ां भी जड़ियां ना अपने आप चंगियां हो जांदियां। कहिंदे ने जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है, कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। जी हाँ, जिद्दां दी तुहाडी सोच होवे ना उदां दा ही जिहड़ा जगत है संसार है वो तुहाडे वास्ते हो जांदा है। एक चंगा इंसान जदों चंगी सोच रखता है तां सारा संसार उन्हूं बहुत चंगा लगता है, वो ग्रैटीट्यूड नाल यानी धन्नवाद नाल ईश्वर दे प्रति भर जांदा है। ते जदों असी सोच किसी होर तरह की रखते हैं तो फिर सानू गलतियां ही लभदियां हैं, और जदों गलतियां लभदियां हैं तो फिर असी अपने अंदर अंदर ही जिहड़े झुलसते जाने हैं। तो इहदा तरीका की है? इहदा तरीका इको ही है कि ईश्वर के प्रति जिहड़ी तुहाडी आस्था है ना वो बनाए रखो और हमेशा उहदा धन्नवाद दो। धन्नवाद तुहानू एडा चंगा शरीर दिता है, तुहानू साह दिते ने, तुहानू पीन लई पानी दिता है, तुहानू साह लैन लई हवा दिती है, और पृथ्वी दे विच वन सवन्ने जिहड़े फल फ्रूट ने सब्जियां ने तुहाडे लई दिती है। तां इही सत है, इही शिव है, और इही सुंदर है। ते आओ फिर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं लता जी दे गाए इस प्यारे जय भजन नुमा गीत के नाल।

जी हाँ, पैसा बोलता है और उहदे नाल असीं वी बोलदे हां। और गल जदों बोलन दी कीती जांदी है तां बोल के बहुत सारियां चीज़ां दसियां जांदियां। जी हाँ, और कुछ चीज़ां लिख के भी दसियां जांदियां। जदों असीं इही सूचनावां दा आदान प्रदान करदे हां ना, तां जन्म हुंदा है जर्नलिज़म दा। जी हाँ, जर्नलिज़म यानी कि पत्रकारिता दा। और इहदे विच बहुत वड्डा योगदान हुंदा है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दा, क्योंकि जो भी साढ़े आले दुआले जिहड़ा खेड है उहदे च की कुछ घटदा है, इहदे बारे सानूं जिहड़ा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ना उह दसदा है। तुसीं वी सोच रहे होगे कि गौरव अज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की गल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जी अज है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, यानी कि खेल पत्रकारां दा सब तो वड्डा दिन। और इहदी स्थापना 2 जुलाई 1924 दे विच पैरिस समर ओलंपिक के दौरान की गई सी। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रेस संघ यानी AIPS ने इहदी जिहड़ी स्थापना है ना उह कीती सी। और 1994 दे विच AIPS की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर इस दिन नूं पहली बार अधिकारिक तौर पर मनाया गया सी, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस। और खेल पत्रकार सिर्फ हार और जित, सिर्फ स्कोर दीआं गल्लां नहीं करदे, बल्कि खिडारियों के संघर्ष, खेड के पिछे की राजनीति, मैदान ते रोमांच, हर पल नूं ओ तुहाडे नाल संजोंदे ने। उन्हां दे जज्बे नूं सलाम करन लई इह जिहड़ा दिन है वह मनाया गया है। और जे गल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की कर रहे हैं तां असीं क्यों ना किसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दे नाल ही गल करिए, जिहड़े सानूं इहदियां बरीकियां दस सकन, इहदे बारे सब कुछ दस सकन, क्योंकि जे उन्हां दे मूँह तों सुणांगे ना ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਦੀਪ।

प्रसार भारती एक विशेष सूचना आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार सूबा सरकार जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित

0: मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: जैसे ही गीत नाल अज दा सोहनी सवेर प्रोग्राम हुण इत्थे ही खत्म हुंदा, अपने दोस्त गौरव नूं इस प्रोग्राम नूं खत्म करन दी दिओ इजाजत। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते आकाशवाणी दा ई जलंधर केंद्र है। स्टूडियो घड़ी दे मुताबिक इस वेले सवेर दे 8 बज रहे ने। आओ हुण लै चलदे आ तुहानूं साडे दिल्ली केंद्र, जित्थों तुसीं सुणोगे समाचार प्रभात 8:15 बजे मॉर्निंग न्यूज़ और 8:30 बजे खबरां।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
3: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के 2-तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते

0: क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय

0: गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं डूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब डूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी NCR में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल NCR, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ

0: हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट। चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the relationship.
3: During the first economic security dialogue held in Tokyo in November 2024, the two sides identified 5 sectors as priority sectors for strategic collaboration. These are semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, clean energy and information, and communication technology. The India-Japan relationship is marked by frequent high-level political engagement. Most recently, Prime Minister Narendra Modi interacted with the Japanese Prime Minister during the G7 summit in France. The two leaders had earlier met on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg in November last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the partnership. An action plan for Japan-India human resource exchange and cooperation was launched during the annual summit in 2025, which envisages two-way exchange of 5 lakh personnel in 5 years, including 50,000 skilled and semi-skilled personnel from India to Japan. Apart from annual summits, high-level exchanges and meetings regularly take place at foreign Minister, Defense Minister, NSA, Foreign Secretary, and other levels. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said he is delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said

0: interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Center issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सुनाया तकायची नाल आज नवी दिल्ली च सालाना शिखर सम्मेलन पद्धरी गलबात करेंगे। कर्मचारी भविख निधि संगठन EPFO वालों वित्तीय साल 2025-26 लई ब्याज दर 7.8% रखने का ऐलान। केंद्र सरकार ने भारत में वट्सएप के नवे यूजरनेम फीचर संबंधी मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मंगे। भारत ने पाकिस्तान के फारूकाबाद में 125 साल पुराने पवित्र गुरद्वारे श्री गुरु सिंह सभा साहब को ढाउन की सख्त निंदा की। मौसम विभाग वालों दक्षण पछमी मानसून के अगे वधन के मद्देनज़र अज तो 7 जुलाई तक पंजाब हरियाणा के चंडीगढ़ च कई थावां ते भारी बारिश बारे येलो अलर्ट जारी। पंजाब च कई थावां ते देर रात तो मीह पै रहा है। मर्दां दे क्रिकेट च भारत ते इंग्लैंड दरम्यान बीती रात पहला 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच मीह कारण रद्द होया। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली च जापान के प्रधानमंत्री सुनाया तकायची नाल सालाना शिखर सम्मेलन पत्री गलबात करेंगे। ये सम्मेलन दोवां मुल्कां नूं आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा करन अते दुवल्ले सहयोग नूं मजबूत करन दा मौका प्रदान करेगा। गलबात तो बाद कुछ समझौतों ते दस्तखत होने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री तकायची कल शाम भारत के 3 दिन दौरे लई नवी दिल्ली पहुंचे। ये भारत का उन्हां दा पहला अधिकारित दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ते जापान एक विशेष रणनीतिक ते विश्वव्यापी भाईवाली सांझी करते हैं अते ये दौरा इसनू अगे वधाउण विच मदद करेगा। साडे पत्रकार ने दस्सिया कि आर्थिक सुरक्षा दोवें मुल्कां दे संबंधां दा सब तो महत्वपूर्ण पहलू है। नवंबर 2024 विच टोक्यो च होए पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद दौरान दोवें देशां ने रणनीतिक सहयोग वास्ते 5 खेत्रां नूं तरजीह खेत्रां वजों पछाणिया। इह खेत्र सैमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मासूटिकल, स्वच्छ ऊर्जा अते सूचना ते संचार तकनालोजी ने। हाल ही विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस विच G7 सम्मेलन दौरान जापान के प्रधानमंत्री नाल गलबात की। दोवां नेतावां ने इस तों पहलां पिछले साल नवंबर विच जोहान्सबर्ग विखे होए G20 सम्मेलन दौरान भी गलबात की। सालाना सम्मेलन भाईवाली के रणनीतिक एजेंडे नूं अगे वधाउण वाला प्रमुख मंच बनिया होया है। सालाना शिखर सम्मेलनां तों इलावा विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, NSA, विदेश सकत्तर ते होर पद्धरां दे उच्च पद्धरी आदान प्रदान अते मीटिंगां नियमित तौर ते हुंदियां रहिंदियां ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जापान के प्रधानमंत्री सुनाया तकायची नाल व्यापक चर्चा नाल दोवां देशां दी भाईवाली नूं होर मजबूत करन विच मदद होवेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्होंने कहा कि भारत अते जापान हिंद प्रशांत ते होरना खेत्रां च शांति, स्थिरता अते खुशहाली लई अपने सांझे उपराले जारी रखणगे। केंद्रीय सरकार ने कर्मचारी भविख निधि स्कीम 2026 नूं नोटिफाई कर दिता है। यह योजना 29 जून तो लागू हो गई है। नवी योजना 1952 की कर्मचारी भविख निधि योजना की थान लवेगी। इस योजना का उद्देश डिजिटल पालना नूं मजबूत करना, प्रशासकीय कुशलता च सुधार करना, खात्यां दे तबादले की सहूलत नूं आसान बनाउणा ते भविख निधि ढांचे के नवे किरत कानून अनुकूल बनाउणा है। नवी योजना तहत लाजमी EPF अंशदान कर्मचारी ते मालक दोनों की तनखाह का 12% बनया रहेगा। केंद्र सरकार वालों नोटिफाई किए गए अदारों उत्ते 10% की मौजूदा दर लागू रहेगी। योजना विच पारदर्शिता नूं बेहतर बनाउण ते भविख निधि प्रबंधन नूं वधेरे कुशल बनाउण लई इलैक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावे, ई पासबुक ते यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नाल जोड़न ते भी जोर दिता गया है। सरकार ने भारत में वट्सएप के यूजरनेम फीचर की शुरुआत संबंधी मेटा को एक नोटिस जारी किया। इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के सूत्रों मुताबिक सरकार ने 3 दिनों के अंदर वेरवे समेत जानकारी प्रदान करने लिए कहा है। भारत ने पाकिस्तान के फारूकाबाद में 125 साल पुराने पवित्र गुरद्वारा

मेहरबान दोस्तो, मैं आप सब सूझवान स्रोतियां ते दर्शकां दा बेहद शुक्रगुजार जिन्हां ने अपने निमाणे जे मान नूं मान बख्शा है। ते मेरी भी आप सब लई इहो दुआ है, जेड़ा अज तक होया ना होवे मैं ऐसा थोनू प्यार दियां। मेरी उम्र हजारां साल होवे हर साल थोड़े तो वार दें। सो गीत पेश है कि जदों दिलां दी वही तेश्क दे खाते खुल दें ते हर दिल चो आवाज की निकलती है।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने तो बोल रहा।
0: फिर तू
1: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ। इकल्ले तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन, लम्मे अंदर जाओगे।
2: 10 लाख दो बच जाओगे।
0: सर इन्हें कितने लिया माँ?
2: एक लिंक भेजा है, उन्हें प्रोसेसिंग लगी।
1: 2 लाख भेजो, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख?
3: की होया पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं मेरे पार्सल जो ड्रग्स मिले हैं।
1: ओए
0: कट दिता।
3: घबरान दी लोड नहीं पापा, डिजिटल अरेस्ट जी हक कुछ नहीं हुंदा, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आन वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जा वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उना नु कोई पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नु रिपोर्ट करो। जे तुसी सियाणप नहीं विखाओगे
2: आप पैसे गवाओगे। आरबीआई कहंदा है
4: जानकार बनो सुचेत रहो।
5: जी बिल्कुल, जानकार रहो और सचेत बनो जे तुसी अपने पैसियां नु संभाल के रखना चाहते हो। फिलहाल तुसी इस गीत नूं संभाल के रखिया, जिहड़ा गीत असीं तुहानूं सुनाया सी और कहा सी कि तुसीं अंदाज़ा लाओ कि कीड़ी फिल्म तो यह गीत लिया गया। और मैनूं उम्मीद है बहुत सारे साथियों ने पहचान लिया होना, जे नहीं पहचानिया किसी ने मेरे वर्गे ने तो मैं दस दवां इहनूं लिया गया फिल्म जिगरी यार च। ते आओ फिर हुण अगले गीत दे नाल तुहानूं रूबरू करा दिए, तुहानूं सुना दिए। अगला गीत जिहड़ा तुहानूं सुनाउण जा रहे हां वो प्रभ गिल की आवाज़ च और इनू लिया गया फिल्म गोरियां नूं दफा करो। तो आओ फिर सुनिए ये गीत।

प्रोग्राम चल रहा है जी महक पंजाब दी और इस ही गीत दे नाल ए प्रोग्राम जड़ा हुआ इत्थे ही खत्म होता है। अपने दोस्त गौरव नूं दिओ इजाजत। मीडिया वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। आओ सुनते हैं एक संदेश।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। तो आओ झात मारते हैं हुण तक दियां मुख खबरां वल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची नाल आज नवी दिल्ली विच सालाना शिखर सम्मेलन पदरी गलबात करनगे। कर्मचारी भविख निधि संगठन EPFO वालों वित्तीय साल 2025-26 लई ब्याज दर 8.25% रखने का ऐलान। केंद्र सरकार ने भारत विच व्हाट्सएप ते नवे यूजरनेम फीचर संबंधी मैटा नूं नोटिस जारी किया, 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मंगे। भारत ने पाकिस्तान के फारूकाबाद विच 125 साल पुराने पवित्र गुरद्वारे श्री गुरु सिंह सभा साहिब नूं ढाउण की सख्त निंदा की। दिल्ली सरकार ने हवा प्रदूषण नूं रोकण लई सर्द रुत का स्थाई प्रदूषण मास्टर प्लैन अधिसूचित किया। भारत और मलेशिया ने कल नवी दिल्ली में 12वीं सब कमेटी की मीटिंग दौरान दुवल्ले फौजी सहयोग के पहलुओं की समीक्षा की। पंजाब सरकार वालों कल संगरूर जिले के धुरी तो मुख्यमंत्री मावां तियां सत्कार योजना की शुरुआत। पंजाब ने वित्तीय साल 2026-27 की पहली तिमाही लई वस्तु और सेवा कर GST की वसूली विच 24.45% का शानदार वाधा दर्ज किया। मौसम विभाग वालों दक्षण पश्चिमी मानसून के अगे वधन के मद्देनज़र अज तो 7 जुलाई तक पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में कई थावां ते भारी बारिश बारे येलो अलर्ट जारी। पंजाब च कई थावां ते देर रात मीह पै गया और मर्दां दे क्रिकेट विच भारत और इंग्लैंड विचकार बीती रात चेस्टर ले स्ट्रीट विखे पहला 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच मीह कारण रद्द होया। ये सन हुण तक दे मुख समाचार। तुसी जुड़े हुए हो आकाशवाणी जलंधर दे नाल और हुण समा हो गया है साढ़े अगले प्रोग्राम एक कलाकार जिहदे विच अज तुसी मुहम्मद अजीज़ जी हाँ लेट मुहम्मद अजीज़ दे गाए हुए गीत जड़े ने वो सुनोगे। बस एक छोटा जिहा संदेश और उस तो बाद हाज़र होवांगे लैके प्रोग्राम जिहदा नाम है एक कलाकार।
1: ले लो छोली बेगाले ससा नूं मंगदियां पिछों रोंदियां कंदां दे कोले।
2: जेड़ी गल असी बोलचाल दी भाषा च नहीं कर सकदे लोक गीतां दा सहारा लेके बखूबी कह दिंदे आ। लोक गीतां दे वख वख रूप ने जन्म तो लेके अंत समय तक जिन्हां विच लोरियां

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार जी, एक बार फिर थोड़ा स्वागत करता है थोड़ा अपना रेडियो बेली रेडियो दोस्त गौरव और लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम एक कलाकार। और अज का जोड़ा ये प्रोग्राम है ये आधारित होएगा लेट मोहम्मद अजीज़ द ग्रेट मोहम्मद अजीज़। एक ओ आवाज़ ओ बुलंद आवाज़ जिन्हों असी जदों भी सुनते हैं ना तो एक बारी साड़ा दिल जड़ा है उहदे लई उत्थे रुक जांदा है या कहां बहुत तेज़ी नाल धड़कदा है क्योंकि जदों उन्हां दी ओ आवाज़ साडे कन्न च पैंदी है ना तो लगता है इदां कि वाकई कोई मर्द बोल रहा है। तुसीं गल कहोगे कि गल मर्द दी कर रहे ने बड़ा जोर दे के गल की है। वो गल भी यही है कि मोहम्मद अजीज़ जिन्हां दा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दे विच नाम बड़े ही उच्चे दर्जे च लिया जाता है उन्हां दी जिहड़ी पहला हिट सोंग सी वो फिल्म मर्द तो ही आया सी। जी हाँ, फिल्म मर्द तो आया गीत जिन्हों आवाज़ दिती सी मोहम्मद अजीज़ होरां ने और लोगों नूं यही लग्या सी कि ये अमिताभ बच्चन की ओरिजिनल वॉयस है। इन्नी ज़्यादा मैच करती पई सी अमिताभ बच्चन की आवाज़ के नाल कि उस तो बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन वास्ते बहुत सारे गीत गाए। और अमिताभ बच्चन जी का अपना ये कहना है कि अगर कभी वो गाते तो वो भी शायद अपनी आवाज़ नूं मोहम्मद अजीज़ वर्गा ना गा सकते और जो उन्होंने गा दिता वो हमेशा लई अमर हो गया। तो अज है उन्हों का जन्मदिन। जी हाँ, अज है 2 जुलाई और 2 जुलाई नूं हुंदा है मोहम्मद अजीज़ होरां दा जन्मदिन। तो बहुत सारे गीत और बहुत सारियां गल्लां करनियां उन्हां बारे। फिलहाल प्रोग्राम दी जिहड़ी शुरुआत है ना वो उन्हां दे ही गाए एक इहो जिहे गीत नाल करन जा रहा जिन्हां नूं तुसीं बहुत ज़्यादा प्यार दिता है और बहुत पुराना गीत है उन्हां दा। एक फिल्म आई सी 20 साल बाद। जी हाँ, 20 साल बाद फिल्म और आनंद बख्शी ने गीत लिखा सी। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने नाल इस गीत दे संगीत दिता सी। गाया सी मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल होरां ने। ते आओ फिर शुरुआत करते हैं इस गीत दे नाल जिन्हों लिया गया फिल्म 20 साल बाद। तो

क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।

हूँ भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: प्रोग्राम चल रहा है एक कलाकार और तुसी सुन रहे हो मोहम्मद अजीज़ दे गाए गीतां नू। अज उन्हां दे जन्मदिन ते ये प्रोग्राम उन्हां नू समर्पित है। और गल असी कर रहे सी कि कलकत्ता दे एक छोटे जे रेस्टोरेंट तो उन्होंने गाना शुरू किया सी और जदों बॉलीवुड दे विचों आए तो उन्हां दी आवाज़ ने जिहड़ियां धमालां पाईयां ना वह हजे तक साडे कन्नां दे विच गूंज रही हैं। और ना सिर्फ अमिताभ बच्चन बल्कि 1980-1990 के दशक च जिन्ने भी टॉप ब्लॉकबस्टर स्टार रहे उन्होंने एक चीज़ कॉमन रही, वह सी मुहम्मद अजीज़ की आवाज़। चाहे गल ऋषि कपूर की हो जाए या गल हो जाए मिठुन चक्रवर्ती की, और चाहे तुसी अनिल कपूर होर की भी गल करो। जी हाँ, अनिल कपूर के भी बहुत सारे जड़े मशहूर गीत ने वह गाए मुहम्मद अजीज़ होर ने। और उन्हां दा ही गाया एक गीत तुहानू सुनाउण जा रहे हैं। ये गीत नूं तुसी बहुत प्यार करदे हो और जदों भी ये गीत आंदा है ना तो अपने आप च ही तुसी झूमण ते मजबूर हो जांदे हो। तो आओ फिर सुनिए उही गीत। मुहम्मद अजीज़ की आवाज़ और फिल्म है जी राम लखन। तो आओ सुनते हैं ये मशहूर गीत जिदे नाल तुहानूं सारिआं नूं प्यार भी है और तुसीं ना पसंद भी बहुत करदे हो। और इहदे विच अमित कुमार भी ने। जी हाँ, अमित कुमार दी भी आवाज़ विच है।
5: दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए कौन है हीरो और कौन है।

प्रोग्राम चल रहा है जी, एक कलाकार और एक होर मशहूर गीत जिहड़ा मुहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति दा, और ज़्यादातर तुसीं अजकल उहदा पंजाबी वर्जन भी सुन रहे हो दलजीत दोसांझ दे मूँह तो, अपने शोज़ दे विच वी गल करदे ने। ओह गीत है फिल्म खुदा गवाह तो लिया गया, एक गीत ते आओ भी सुनिए।

इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रोग्राम चल रहा है जी गज़लां दा और गल गज़लां दी होवे तां गज़ल सम्राट जगजीत सिंह दा नाम बड़े अदब दे नाल लिया जांदा है। ना सिर्फ भारत दे विच बल्कि पूरे संसार दे विच जदों भी गज़लां दी गल हुंदी है ना तां जगजीत सिंह उहदा पूरक बन जांदे ने। ते इस प्रोग्राम दे विच अगली गज़ल जगजीत सिंह दी आवाज़ दे विच और निदा फाजली ने इस गज़ल नूं लिखिया और म्यूजिक कंपोज इहदा जतन ललित होरां ने कीता है और इहनूं लिया गया है फिल्म सरफरोश दे विच्चों। ते आओ फिर सुनदे हां जगजीत सिंह दी मखमली आवाज़ दे विच ये गज़ल।

दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तेरा नाम लिया। इसका गम नहीं कि तूने किया दिल बर्बाद, गम तो ये है कि बहुत देर में बर्बाद किया। गजलां दी गल करिए तां जिहड़ी शायरी है ना वो अपने आप झलक पैंदी है। बहुत सारे वड्डे वड्डे शायर इस भारत दे विच होए और उन्होंने बहुत उच्चिया उच्चिया जड़िया गज़लां या वड्डे वड्डे कलाम जड़े लिखे ने, और उन्हां ही कलामां दे विच एक कड़ी बनती है गज़लां दी। और जे गज़ल गायकां दी गल करिए तां जगजीत सिंह, पंकज उदास और एक होर महान गायक चंदन दास, जिन्हां दा बड़े ही अदब दे नाल नाम लिया जांदा है जदों भी गज़लां दी गल आती है। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਦਾਸ ਦੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

मेल गज़ल गायक ही नहीं, फीमेल गज़ल गायिका ने भी अपना बहुत वड्डा परचम जिहड़ा है गज़ल गायकी दे विच फहराया, जिहदे विच सब तो उपर नाम आंदा है चित्रा सिंह होरां दा। और चित्रा सिंह दी जोड़ी जिहड़ी जगजीत सिंह नाल बहुत पसंद कीती गई, और उन्होंने कल्ले भी बहुत सारियां गज़लां गाईयां ने, ते आओ उन्हां दी आवाज़ दे विच सुनदे हां एक गज़ल।

नमस्कार श्रोतियो, हैलो फरमाइश लैके तुहाड़ा दोस्त गौरव हाजिर है एक बार फिर। यह प्रोग्राम है जिदे विच असी तुहाडे सारयां दे मन पसंदीदा गीत चलाने हैं, वह फरमाइशी गीत जिहड़े तुसी सानू फोन दे उत्ते फरमाइश भेजते हो। और जे तुसी भी चाहते हो कि तुहाडी फरमाइश दर्ज की जाए, तुहाडा फोन जिहड़ा इस वेले तुहाडे हाथ च होना चाहिए और नंबर उत्ते डायल करना तुसी 0181 23 42 173। जी हाँ, इस नंबर ते कॉल करो और जुड़ जाओ साढ़े नाल। और जदों तक साढ़े पहले कॉलर दोस्त साढ़े नाल जुड़ते हैं, आओ तुहानूं गीत सुना दिए। और जिहड़ा गीत तुहानूं सुनाउण जा रहे हैं, उस गीत नूं गाया है किशोर कुमार ने। जी हाँ, किशोर कुमार दी बुलंद आवाज़, और जदों भी गल किशोर कुमार जी दी आती है तां उहनां दी जिहड़ी परसनैलिटी है वह अक्खां दे विच पहले सामने आती है। और हर तरह के गीत उन्होंने गाए ने, उन्हां दे ओह गीत जिहड़े अलग अलग विधा दे नाल उन्होंने गाए है, उन्हां दे विच्चों ही एक गीत सुनाउण जा रहे हैं। और इस गीत नूं किशोर कुमार ने गाया है और लिया गया फिल्म खुशबू दे विच्चों। आर डी बर्मन ने संगीतबद्ध किया है और गुलजार होरां ने कलमबद्ध किया है। तो फिर सुनदे हां किशोर कुमार दा गाया ये गीत।

0: ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री ताकायजी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री ताकायजी के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया गया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली लौटकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाढ़ के हालात की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों राज्यों में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय अंतर मंत्रालयी दल भेजा जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

बाकी सतना एमपी तो उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक ते माही मलिक, लेकिन कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा ये कितों पहुंचे ने मजनू का टीला तो। बिल्कुल जी, अगले सुनेहे नाल पहुंचे ने गिद्दड़बाह तो मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल ते बेबी हिनाशा। लो फिर साढ़े कोल साढ़े बहुत ही पुराने स्रोते परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा तो भी पहुंच गए ने, इंजीनियर अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, विक्रमजीत, अनमोल सिंह ते पवनीत ग्रोवर। और ब्रैम्पटन कनेडा वाले भी पिछे नहीं है, निखिल भाटिया, नीति भाटिया ते महरीन भाटिया भी इन्हां दे नाल पहुंचे ने जी। शुक्रिया जी बहुत बहुत तुहाडा। बक्सर बिहार तो शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार तो डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर तो श्रद्धानंद आर्या, अभ्यानंद आर्या और परमानंद आर्या। सारिमपुर बक्सर तो राज एमडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी भामिका ते वाणी थांदी ये पहुंचे ने पिंड ते डाकखाना टोरोवाल, तहसील बलाचौर, जिला नवांशहर, पंजाब तो। और अगले फरमाइश के नाल अमरीक सिंह टेलर, मास्टर जलान, जिला संगरूर तो अपने साथी मैंबर भी लैके पहुंचे ने जी, मनप्रीत सिंह, बलजिंदर सिंह ते परमजीत पुरवा होरां नूं। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ तो हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि ते नोखेलाल वर्मा भी पहुंचे ने। बागपत उत्तर प्रदेश तो संजय ढींगिया, नमन ढींगिया ते अपार ढींगिया भी हाजिर है। और अगले सुनेहे दे नाल सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली तो गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले ते अशोक येले ये पहुंचे ने। वड़िंगखेड़ा पंजाब तो मिंटू टोमस, पिंकी लवली ते आरती अरोड़ा। लो फिर जलालाबाद वेस्ट तो भी हाजिर ने, सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी ते निमित आहूजा। राम राम जी, ए भी सानू लिख के भेज देने। और अगले सुनेहे दे नाल सदर बाजार कुरावली तो अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार ते सोनम वर्मा भी पहुंचे ने। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान तो दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत ये भी हाजिर हो गए ने। और कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया तो ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर तो प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी ते प्रांजल राय भी पहुंच गए। और भोपालगढ़ राजस्थान तो धर्मेंद्र छीम्पा, कपिल छीम्पा, ईशान ते पूजा परिहार, गुरमीत सिंह मीता भी पहुंच गए ने जी साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो। मेन बाजार शेरपुर थाना जिला संगरूर तो मिंटू सप्पल, प्रभजोत ते मनजोत सप्पल। गीत दी फरमाइश दीदार संधू ते अमर नूरी दियां आवाज़ां ते गीत तुहाडे रेडियो सैट ते है। कुछ कुछ साढ़े जो मौसम चल रहा है उहदे ते असी ए वाला गीत जिहड़ा है ना, तुहाडी ही गीत तुहाडी ही फरमाइश दा है, लेकिन गीत दे जिहड़े बोल ने वो अज दे मौसम दे अनुसार लग रहे ने।

या इब्राहिम सद्दाम और अदीब ये भी पहुँच गए ने। ये पहुँचे कितों ने जी, गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर तो। और अगले सुनेहे दे नाल लेवाई छत्तीसगढ़ तो गुलाबदास मानकपुरी, राजा दास मानकपुरी ते रानी मानकपुरी ये भी पहुँच गए ने। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक ये अनारकली बाज़ार जगराओं तो हाजिर होए ने। पिंड संदोहा नेड़े मोड़ मंडी तो जगराज सिंह कणकवालिया, गंगा राम, मोहन लाल, राजेश्वर, सोनू, अरविंद कुमार ते लाडी धालीवाल समाणा तो पहुँच गए ने। गीत दी साढ़े कोलों फरमाइश जिहड़ी पहुंची है जी, सुरिंदर कौर की आवाज़ च गीत सुनना चाहते हो तुसी ते जरूर असी उन्हां दी आवाज़ च गीत तुहाडे नज़र करांगे। कुछ होर नाम भी शामिल कर लिए इस गीत दे नाल। मेन बाज़ार शेरपुर थाना जिला संगरूर तो मिंटू सप्पल, सिमरजोत ते फतेहजोत सप्पल ये भी पहुँच गए ने। मलोड तो कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, बलजीत गिल कनेडा तो, दीशा मोला, जगतार जग्गा धौला किंगरा तो पहुँचे ने जी। और मोहाली तो अमरदीप सिंह सैनी, लाभ कौर, जीवनजोत कौर सैनी, सैवी सैनी ते नेदिश सैनी कनेडा तो पहुँचे ने। और अगले सुनेहे दे नाल जी इन्हां ने कुछ ना कुछ लिखिया जरूर हुंदा है। आओ सब रुख लगाइए, वातावरण बचाइए। बिल्कुल बहुत ही सोहणे सुनेहे दे नाल तुसी पहुँचदे हो। तुसी भी कुछ कुछ अपनियां एक दो लाइनां लिख के जरूर भेज सकदे हो, असी जरूर पढ़ांगे। क्योंकि तुसी फरमाइशां लिख के भेजदे हो, साडे रोज़ाना दे स्रोते हो, ते अपनी जिहड़ी वट्सएप राहीं तुसी अपनी गलबात साडे तक पहुँचा सकदे हो। अगले सुनेहे दे नाल हाजिर ने जसवंत सिंह सरपंच, गुरतेज सिंह, लालचंद, कुलदीप सिंह, बॉबी, दविंदर सिंह ड्राइवर DMR कंपनी हीरावाली फाजिलका तो ये हाजिर हो चुके ने जी। और अगला सुनेहा साढ़े तक पहुँचाया खैल बाज़ार पानीपत तो भावना मल्होत्रा, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कलोनी रोहतक तो पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का पहुँचे ने। पिंड ते डाकखाना खुइयां सरवर, तहसील अबोहर, जिला फाजिलका तो पहुँचे ने रमेश बिल्ला चावला, आस्था जय श्री संतोष चावला, हेमंत दीपक रमेश चावला, राइजल हेजल विहान चावला, रिजू बब्बू विहू चावला ते सारा ही चावला परिवार साढ़े कोल पहुँच गया। करणवीर हाउस करणवीर सिंह पॉल सारे ही अपने परिवार के नाल पहुँचे ने जी, सराभा नगर जलंधर तो। और मैस गेट नाभा वाले भी पहुँच गए ने। नाम सोमदत्त, ज्योति राणी, कैरव गुरमन्नत ये भी हाजिर ने। सुरिंदर संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश, प्रीतिशा संधू ते मैक्स ये पहुँचे ने गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर तो, शुक्रिया जी। और अगले सुनेहे दे नाल साढ़े तक हाजिर ने न्यू गुरु रामदास कलोनी गुरदासपुर तो प्रीतम दास अंगुराना, सत्या देवी, पोते वानिया ते पोतरे, पोती वानिया ते पोतरे अरमान, अविताज कनेडा और काका दियाविक अंगुराना ते सारा ही अंगुराना परिवार साढ़े तक पहुंच गया। कनेरा मोहल्ला पटियाला तो मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता ये भी हाजिर ने। पिंड चंदबाजा फरीदकोट तो अंग्रेज सिंह गेजा, गुरमीत कौर, जगप्रीत सिंह, मनप्रीत कौर, करमजीत सिंह, चरणजीत कौर, पोती नवकीरत कौर, गुरसीरत कौर ते पोता गुरप्रताप सिंह सारा ही पुरबा परिवार साढ़े को धमका पान पहुँच गया जी। फिर तुहाडे सारिआं दी रली मिली पसंद सुरिंदर कौर की आवाज़ च गीत सुनन दी है, ते आओ फिर असी इहनां दी आवाज़ च गीत सुनदे हाँ ते लुत्फ उठाने हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है।

0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलमैंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वस्ते विड़े।

0: खरा बंदा है।
1: एक गल तू अपने मुंह ना कह,
0: होर फिर
1: लोक कहन लोक
0: तो बहुत कमीने ने, उन्होंने मेरे बारे आज तक कुछ भी नहीं किया।
1: तदे ही ते मैं क्या है, तू खरा है।
2: बुढ़े ने मुस्कुरा के किया ते फिर हाथ वधा के शदाई दे हथों लालटन फड़ ली। शदाई कुछ भी ना कर सकिया, जिवें उहदे हथ पैर सुन हो गए होण। मैं देखिया शदाई डाढा बेचैन हो गया सी, क्योंकि पल भर लई उहदे दुआले जिहड़ा प्रकाश फैल गया सी उह उसनूं छड्डणा नहीं सी चाहुंदा, पर हुण वो रोशनी नेत्रहीन बुढ़े नाल चल पई। बुढ़ा बुड़बुड़ा रहा सी,
1: एवें खोई जांदा सी, इह तां मेरी रोशनी है।
0: वाह बहुत अच्छे।
2: शहदाई ने दूर जा रही रोशनी नूं कूरिया, मैं भी उधर देखिया, क्योंकि हुण असी बिल्कुल हनेरे च सां।
0: यार हर बंदे कोल एक जगती हुई लालटेन होनी चाहीदी है। मैं भी अपने लिए एक लालटेन बनवा लवांगा।
2: पर तू ना बनवावी।
0: क्यों?
2: बस मैं कह देता ना।
0: पर क्यों?
2: वो तैनू लोड़ नहीं।
0: पर मैं जरूर बनवावांगा, तद तक मैं इस बुढ़े दी लालटेन नाल ही चानन लवांगा। मैं हनेरे च नहीं रह सकता। मैं हनेरे च।
2: ते वो काली नाल नेत्रहीण बुढ़े वल वध्या। मैं उन्हूं रोकद्या कहा, देख आपां इह काम ना करिए, आपां नूं इन्हां दे राहां च नहीं खलोना चाहीदा।
0: पर मेरी रोशनी।
2: यह कहिंदा होया शहदाई रुक गया ते दूर जांदे नेत्रहीण बुढ़े नूं हसरत नाल तकण लगा। उसे वेले दूरों उस दी आवाज़ साढ़े तक पुज के कालजे च धूप आ रही सी।
1: ओहो किन्ना हनेरा हो गया, पता नहीं इस हनेरे च मैं जगदी हुई लालटेन लैके तुर सकांगा कि नहीं।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र

0: वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
1: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
2: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है, हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ तुहानू जानकारी दे दईए अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दे प्रसारण समय की। हुण तो थोड़ी देर बाद 1:10 ते तुसी प्रादेशिक खबरां सुनोगे। सवा 1 तो लैके 2:15 तक प्रोग्राम सुनोगे फौजी वीरां लई। इस विच खबरां अपने निर्धारित समय ते प्रसारित कीतियां जाणगियां।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं यादविंदर सिंह तों प्रदेशक खबरां सुणो। भारत ने पाकिस्तान के फारूखाबाद च स्थित 125 साल पुराने इतिहासक गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब नूं ढाउण की सख्त निंदा की है और इस नूं बेहद निंदनयोग और निशाना बना के की गई भनतोड़ वाली कार्रवाई दस्या है। गुरद्वारा साहब नूं ढाउण के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के बुलारे रणधीर जायसवाल ने इस घटना उत्ते गंभीर चिंता प्रगट की है। नाल ही स्थानक अधिकारियों या इवैकुई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड वालों कोई सार्थक कार्रवाई ना किए जाने की भी जानकारी दी है। उन्होंने दसिया कि यह कोई इकली घटना नहीं है ते इस तो पहला भी इस तरह दीयां खबरां आईयां ने। बुलारे ने कहा कि पाकिस्तान विच धार्मिक घट गिणतियां अते उन्हां दे धर्म स्थानां नूं निशाना बनाउणा लगातार जारी है। पंजाब दे खजाना आबकारी ते कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने दसिया है कि सूबे ने माली साल 2026-27 की पहली तिमाही लई वस्तु ते सेवा कर GST की उगराही च 24.45% का शानदार वाधा दर्ज किया है। इस दे नाल ही GST रीफंड के रूप में 1,270 करोड़ रुपये जारी किए गए ने। माली साल 2026-27 की पहली तिमाही की कारगुजारी बारे खजाना मंत्री चीमा ने कहा कि कुल GST उगराही वध के 7,833 करोड़ रुपये तो वध

फौजी वीरों, मेरे वालों यानी दीपाली वधवा वालों जय हिंद। थोड़े मनोरंजन लैके हाजिर हाँ कुछ हिंदी फिल्मी नकमे। प्रोग्राम का पहला गीत तुहानू सुनाण जा रही हाँ जाने तो या जाने ना फिल्म का, आवाज़ राशिद अली दी। गीत तुहाडे रेडियो सैट ते।

0: पल पल दी खबर सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते
1: के है तुहाडी लॉटरी निकली है टिकट खरीदी सी नहीं अच्छा तुहानू फोन आया है कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया ते हुण आधार नंबर पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने रुको अजिहा ना करना ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा चौकस रहो जागरूक बनो कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो
2: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो हाजिर प्रोग्राम लैके फौजी वीरा लई फौजी वीरो प्रोग्राम दा अगला गीत अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म दा आवाज आतिफ असलम दी गीतकार ते संगीतकार ने इरशाद कामिल

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाई ताकाइची से सालाना सरबरा बातचीत की है। भारत और जापान ने मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें इक्तिसादी, सिक्योरिटी और तवानाई की यकीनी फरहमी, अद्वियात और एआई के शोबे शामिल हैं। अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली में आलमी दहशतगर्दी के सिलसिले में जामे कन्वेंशन की भारत की तजवीज़ की एक मरतबा फिर हिमायत की गई है। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से अकीदतमंदों का पहला जत्था रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो गई है। जुनूब मगरबी मानसून पूरी दिल्ली में फैल गया है, यह शुमाली और मगरबी रियासतों की जानिब मजीद आगे बढ़ रहा है। और फीफा आलमी कप में अमरीका ने 2002 के बाद से नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की है। बेल्जियम सेनेगल को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। भारत और जापान ने आज दवासाजी, मसनूई जहानत, एआई, इक्तिसादियात और तवानाई की सिक्योरिटी समेत कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान के वजीर आजम सनाई ताकाइची के साथ सालाना छोटी मीटिंग की। इस मौके पर फरीकैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तआवुन और इश्तराक को मुस्तहकम करने पर बातचीत की और उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू के बाद एक मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आज के दौर में भरोसा और एतमाद सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकत दारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत और जापान का शुमार दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में होता है और दोनों मुल्क आजादाना और खुले भारत बैरुल काइल को तरजीह देते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों मुल्क इक्तिसादी और तवानाई की सिक्योरिटी की अहमियत को बखूबी समझते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के शोबे में साझेदारी भारत और जापान के दरमियान तआवुन का सबसे ज्यादा अहम सुतून होगा।

0: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
1: इससे कबल आज जापान के वजीर आजम तकाईची राष्ट्रपति भवन के अहाते में रस्मी इस्तकबाल दिया गया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। जापान के वजीर आजम भारत के 3 रोजा दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची हैं। ये भारत का उनका पहला सरकारी दौरा है। वजारत खारजा ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के दरमियान खसूसी कलीदी और आलमी शराकत दारी को मजीद आगे ले जाने के सिलसिले में एक अहम कदम है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि भारत और जापान के ताल्लुकात मुसलसल आला सतह के सियासी राबतों पर मबनी है। अभी हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान जापान के वजीर आजम से बातचीत की थी। गुज़श्ता वर्ष नवंबर में जोहान्सबर्ग में G20 समिट के मौके पर भी दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई थी। बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के बारे में एक जामे कन्वेंशन बनाने की भारत की तवील अरसे से चली आ रही तजवीज की अक़वाम-ए-मुत्तहिदा जनरल असेंबली में एक बार फिर हिमायत की गई है। दहशतगर्दी से निपटने की हिकमत अमली से मुतालिक अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की नवी जायजा मीटिंग के दौरान भारत की तजवीज को 140 मुल्कों की हिमायत से मंजूर किया गया, जिसमें मेंबर मुल्कों पर जोर दिया गया है कि कन्वेंशन को कतई शक्ल देने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। कन्वेंशन की तजवीज भारत ने 30 साल पहले पेश की थी। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि कानूनी खदुखाल पर आलमी सतह पर इत्तफाक राय न होने की वजह से दुनिया में दहशतगर्दी की रोकथाम की कोशिशें कमजोर हुई हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से निपटते वक्त दोहरा मयार नहीं अपनाया जाना चाहिए। भारत ने इस सिलसिले में अपने पुख्ता मौकिफ को दोहराया है कि किसी भी सूरत हाल में दहशतगर्दी को जायज करार नहीं दिया जा सकता और इस लानत को खत्म करने के लिए उसने जामे आलमी कार्रवाई पर जोर दिया है। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक आलमी हिकमत अमली के नवे जायजे को इख्तियार किए जाने के दौरान अक़वाम-ए-मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब करते हुए यूएन में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि दहशतगर्द दहशतगर्द होता है और इस बात पर जोर दिया कि झूठे जवाज या सियासी मसलहत पसंदी की आड़ में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें कमजोर नहीं हो सकती।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बुनियादी कैंप से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 रोजा सालाना यात्रा सरकारी सतह पर कल से कश्मीर के दो रास्तों से शुरू होगी, जो 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून पूरी दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात के कुछ मजीद हिस्सों, मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ गया है। इसी दौरान कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे शहर के रिहायशियों को गर्मी से कुछ राहत मिली। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी से लोगों को राहत मिली है और रियासत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई है। मानसून के रियासत में पहुंचने के बाद ऐसा हुआ है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: जुनूब मगरबी मानसून बाज़ाब्ता तौर पर मंगल को उत्तर प्रदेश पहुंच गया और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़श्ता 24 घंटे में औसत से शदीद बारिश दर्ज की गई, जिससे गर्मी के तवील सिलसिले से लोगों को राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत शदीद बारिश हुई, जिससे कुछ इलाकों में मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए, ताहम दिन का दर्ज हरारत नीचे आ गया। किसानों के लिए बारिश एक बड़ी राहत साबित हुई है, क्योंकि धान की बुआई मुकर्रर वक्त से पहले ही पीछे चल रही है। IMD ने आज कई अजला में शदीद बारिश की पेशगोई की है और कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के मजीद आगे बढ़ने के लिए मौसम साजगार।

0: लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: हुकूमत ने भारत में व्हाट्सएप के जरिए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है। जराये ने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने की मेटा को हिदायत दी है। झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची में लोक भवन में वोटर फहरिस्तों की खसूसी जाम नजरसानी से मुतालिक फॉर्म को भरने और दस्तखत करने के बाद मुतालिका BLO के सुपुर्द किया। इस मौके पर आला चुनाव अफसर के रवि कुमार, रांची के जिला चुनाव अफसर मंजुनाथ भजंतरी और दूसरे चुनाव अहलकार भी मौजूद थे। मरकजी हुकूमत ने समाजी सिक्योरिटी 2020 पर कोर्ट के नफाज के हिस्से के तौर पर EPF स्कीम 1952 की जगह मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड EPF स्कीम 2026 को नोटिफाई किया है। नई स्कीम के तहत EPF की लाजमी हिस्सेदारी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। फीफा आलमी कप में नॉकआउट मरहले में एक्स्ट्रा टाइम के बाद शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए बेल्जियम सेनेगल को 2-3 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। दूसरी जानिब मुआविन मेजबान अमेरिका ने 2002 के बाद नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की। उसने बोस्निया हर्जेगोविना को 2-0 से हराया और प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान की अपनी हममनसब सनाई ताकाइची से सालाना सरबराह बातचीत की है। भारत और जापान ने मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं जिनमें इक्तिसादी, सिक्योरिटी और तवानाई की यकीनी फराहमी, अद्वियात और रिहाई के शोबे शामिल हैं। अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली में आलमी दहशतगर्दी के सिलसिले में जामे कन्वेंशन की भारत की तजवीज़ की एक मरतबा फिर हिमायत की गई है। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से अकीदतमंदों का पहला जत्था रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो गई है। जुनूब मगरबी मानसून पूरी दिल्ली में फैल गया है। यह शुमाली और मगरबी रियासतों की जानिब मजीद आगे बढ़ रहा है। और फीफा आलमी कप में अमेरिका ने 2002 के बाद से नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। फौजी वीरों खबरां तो बाद फिर हाजिर होए आ तुहाडे मनोरंजन लई कुछ होर गीतां दे नाल। पेश कर रही हां प्रोग्राम च वेक अप सिद्ध फिल्म दा गीत। आवाज़ां दित्तियां ने कविता सेठ ते अमिताभ भट्टाचार्य ने। इस गीत नूं लिखिया जावेद अख्तर ने और संगीत निर्देशक शंकर एहसान लॉय।

फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत थुआड़े नज़र कर रही हाँ दिल्ली छे फिल्म का आवाज़ मोहित चौहान की। इस गीत नूं लिखिया परसून जोशी ने ते संगीत निर्देशक ए आर रहमान।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के

0: क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
0: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाईची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
2: We must address the conditions conducive to the spread of terrorism.
1: अमेरिका, इजराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल

0: खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
3: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र, गोवा तट

0: पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जलंधर तो सुनो, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए ते नाल दे नाल वेव्स ऐप दे जरिए तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकते हो। रंगली धरती, रंगली धरती प्रोग्राम च अज दे गायक कलाकार ने सईदा बेगम। आओ सुनते हैं इन्हां दी आवाज़ च प्रोग्राम च सब तो पहला माइया।

आकाशवाणी जलंधर तो सुनो, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर, सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

रंगली धरती प्रोग्राम दे अखीर च आओ सुनते हैं सईदा बेगम दी आवाज़ च, जान भावें ना जान वे, वेड़े आ वर मेरे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते जापान दे प्रधानमंत्री साने तकाईची दरमियान नवी दिल्ली विच सालाना शिखर सम्मेलन पद्धरी गल्लबात होई ए। केंद्री मंत्री भुपेंद्र यादव दा कहना है कि सरकार विकास नूं स्थिरता नाल संतुलित करन वालियां नीतियां राहीं चौगिरदा सुरक्षा नूं यकीनी बना रही है। सलाना श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। जम्मू कश्मीर दे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सख्त सुरक्षा दरमियान 4,822 श्रद्धालुओं दे पहले जथे नूं हरी झंडी दिखा के रवाना कीता है। बंगलुरु दक्षिणी तालुक विच एक चट्टान डिगण नाल 7 प्रवासी मजदूरां दी मौत, कई होर जख्मी होए ने। पंजाब दे माली साल 2026-27 दी पहली तिमाही लई GST वसूली विच 24.45% दा शानदार वाधा दर्ज कीता गया है। कुल GST वसूली वध के 7,833 करोड़ रुपए हुई है। पंजाब राज खुराक कमिशन दे चेयरमैन बाल मुकंद शर्मा ने बच्चों की सेहत के मद्देनज़र हर स्कूल विच पोषण बगीची बनाना लाजमी करन लई कहा है। सूबे दे पुलिस थाणियां विच खड़े अण अधिकृत अते जबत वाहनां दी जल्दी निपटारे लई मुहिम तहत पुलिस ने पिछले एक महीने दौरान 7,402 जबत वाहनां दा निपटारा कीता है। मुहिम जारी है। वेनेजुएला दे लोकां ने ऑपरेशन आमिस्ता तहत स्थापित फील्ड हस्पताल विच तबाहकुन भूचालां तों प्रभावित लोकां नूं इलाज देण लई भारतीय मैडिकल टीम दी शलाघा कीती है।

श्री गंगानगर तो ने बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा ते नरेश कुमार शर्मा। पिंड राजपुरा तो ने हरदीप सिंह, जगवीर सिंह, ज्वाला सिंह, डॉक्टर धर्मवीर झोरड़ ते जगसीर सिंह। पिंड कुड़ियाणा मंडी अरनावली फजिलका तो ने बाबा तिरलोक सिंह, शिवजोत सिंह, गुरसिमरन, राजदीप ते प्रीत। नेड़े धर्मशाला पिंड कोटली अबलू श्री मुक्तसर साहिब तो ने सीताराम केसरी, सुखा सरपंच कोठे ढाबा वाले, देबी कोटली किंदा, बराड़ मोटर वाला नीला। अगली फरमाइश पहुंची है साढ़े को गांधी चौंक रोपड़ पंजाब तो। फरमाइश करने वाले साढ़े दोस्त ने हरदीप मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक ते मीका विरक। अगली फरमाइश पहुंची है जी साढ़े को पंचकूला तो। फरमाइश करने वाले साढ़े दोस्तों के नाम ने आशु, अश्वनी, गोबिंद, टोनी ते लव। आओ दोस्तों इन्होंने सारे की मिली जुली फरमाइश ते सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत जसवीर जसी दी।

टीडी मोहल्ला, माफ करना, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो ने टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका तो ने शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज ते साहिल, जमशेदपुर तो ने हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया ते पप्पी भाटिया, मसीता डब्बावाली तो ने दर्शन लोट, सरगुन, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर ते हनी लोट, मलोट तो ने कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, जिला मुक्तसर पिंड मोला तो ने पाल गिल, गुरदयाल गिल, साधु गिल, दिशा मोला, दर्शन बराड़ ते मलकीत कुड़ियाणा। आओ दोस्तों इन्होंने सारे की मिली जुली फरमाइश से सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत अमरिंदर गिल की आवाज़ के।

मनमीत मनविंदर सिंह पांधा ते जी एस रामगढ़िया। रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान तो ने जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक ते सारा डागला परिवार। आओ दोस्तों इन्हां सारयां दी रली मिली फरमाइश ते सुनदियां प्रोग्राम दा आखरी गीत ते इस गीत तो बाद प्रोग्राम नूं इत्थे ही समाप्त करांगे।

प्रोग्राम चल रहा जी, पंजाबी फिल्म संगीत। पंजाबी गीत सानू नचा देंदे ने, सानू नचा देंदे ने, मस्ती मौजां पूरियां ऐन लुत्फ उठा दिंदे आ असी। सो नचदे रहो, टपदे रहो, गीतां दा लुत्फ उठाते रहो। प्रोग्राम पेश करन दा मतलब ही यह हुंदा कि असी भी नचते रहिए ते तुसी भी नचते रहो। प्रोग्राम च अगला गीत कैरी ऑन।

प्रीत हम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोर अवर संग तोरी। ए बाणी फरमान भगत रविदास जी दे हिरदे दी वेदना है। आप जी प्रभु चरणा च बेनती करदे ने कि हे माया दे पति माधो, जेकर आप जी प्रीत ना तोड़ो ता मैं कदे भी नहीं तोड़ांगा, क्योंकि मैं ता होरना नालों प्रीत तोड़ के आप जी दे नाल सच्ची प्रीत स्थापित कीती है। माधवे तुम न तोरा हो तो हम नहीं तोरे, तुम स्यो तोर कवन स्यो जोरे। प्रभु दे नाल मिलाप दी तांग जीव रूप स्त्री नू मुड़ कदीम तो ही रही है, ताही फिर ओ प्रभु चरना विच बेनती कर दी है कि हे प्रभु मैनू कोई ऐसा संत पुरुष सत पुरुष मिला दियो जो मेरी प्रीत आप जी नाल स्थापित करवा सके। प्रभ मिल बेकाओ प्रीत मन लागी, पाए लगाओ मोहे करो बेनती, को संत मिले बड़पागी। सरवण करदे हां भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ये शब्द।

0: प्रभ मिलबे काओ प्रीत मन लागी पाए लगाओ मोहे करो बेनती को संत मिले बड़ पागी। इस शब्द का गायन किया पाई गुरमीत सिंह शांत ते उनदे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी कुलदीप सिंह।
1: ए पावन पवित्र शब्द शांति दे पुंज शहीदां दे सरताज बाणी दे संपादन करता धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी का उचारिया होया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच राग गौड़ी अंग 204 उपर शोभायमान है। इस शब्द विच परमात्मा नूं मिलन दी प्रीत दा वर्णन है। सिद्धांत यह है कि जदों पिछले जन्मां दे शुभ कर्म जो पिछले जन्मां विच कीते हन उस दे अंकुर जदों फुट पैंदे हन तां परमात्मा नूं प्रीत करन वाले रसक बैरागी उस प्रभु दे सुत्ते सिर दी दर्शन कर लैंदे हन। क्योंकि मिलाप दा मुढ प्रभु प्रति लगन है। जदों कोई जीव इस्त्री लगन विच मगन हो के प्रभु प्रीतम अगे अरदास बेनती करती है तां उस नूं फल लगता है। इस शब्द विच प्रभु प्रीत प्रभु अगे अरदास प्रभु दे घर दी कथा सुननी सारे शब्द दा केंद्री भाव शब्द दियां रहाओ वालियां पंगतियां विच दर्ज है। प्रभ मिलबे कौ प्रीत मन लागी हे भाई मेरे मन

0: जागी।
1: प्रभ मिल बेकाओ प्रीत मन लागी, पाए लगाओ मोहे करो बेनती, को संत मिले बड़ पागी। इस शब्द की व्याख्या की तीसी ज्ञानी कुलदीप सिंह होरा। प्रभु दी महिमा अपरंपार है, उस दी शोभा ध्यान नहीं कीती जा सकती। मेरे लालन की शोभा सद नवतन मन रंगी शोभा, उस परमात्मा दी शोभा बेअंत है, उस दी शोभा उत्तम है। सुनदे हां जोगिंदर सिंह कंग होरां पासों वार्ता। प्रिय की सोभ सुहावनी नीकी।
2: यह अमृतमई बचन बाणी दे बोहित राग दे तनी महान संपादक अते शहीदां दे सिरताज पंचम पातशाह तन तन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग मलार विच उचारण कीता होया है अते समुची मानवता दे पथ प्रदर्शक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र अंग 1272 ते सुशोभित है। प्रभु प्यारे दी शोभा दा गुरबाणी विच बेशुमार अते बहुपक्षी वर्णन उपलब्ध हुंदा है। गुरबाणी परमात्मा दी उस्तत अते उसकी अपार शोभा नाल ओत प्रोत है। वक् वक् बाणीकारां ने प्रभु शोभा प्रभु वडियाई अथवा प्रभु महिमा दा बड़े विस्थार नाल उलेख कीता है। प्रभु प्रीतम दी महिमा दे अमृतमई बचन जीव दे हिरदे नूं शांत करदे हन। समर्थ प्रभु प्रीतम दी न्यारी ते विलक्षण महिमा दा अति सुंदर मनमोहना बिंब पंचम दातार जी राग देव गंधारी विच इस प्रकार निरूपित करदे हन। अमृता प्रिय बचन तुहारे अति सुंदर मनमोहन प्यारे सब हो मद निरारे। प्यारा प्रभु अगम अगोचर अकथ अते पतित पावन है, उस वर्गा कोई होर हो ही नहीं सकता। वो जल थल आकाश पाताल हर थां व्यापक है। वो अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर है। वो मिठ बोलड़ा है अते कदे भी कौड़ा नहीं बोलता। वो बख्शिश ते रहमत दा सोमा है। प्रभु प्यारा सर्व उच्च अते बहु बेअंत है। उसकी सर्व उच्चता अते अनंतता नूं पंजवें सतगुरु जी राग देव गंधारी विच इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। मैं पेखियोरी ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा, आना समसर को लागे टूड रहे हम मूचा। रहाओ बहु बेअंत अत बड़ो गहरो, थह नहीं अग हूचा, तोल ना तुलिया मोल ना मुलिया, कत पाईऐ मन रूचा। अजिहे महान प्रभु प्रीतम दे सुंदर स्वरूप नो श्री गुरु नानक देव जी ने बड़े मनमोहणे अते रसावले ढंग नाल शोभादायक दस के अंकित कीता है। तेरे बंके लोयन दंत रीसाला, सोहणे नक जिन लम्बड़े वाला, कंचन काया सोयने की टाला। सारे ब्रह्मंड नू एक सूत्र विच परोण वाले अनंत शक्तियां दे मालक दी शोभा बड़ी सुहावनी अते नीकी है। उसकी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी कोयल वर्गे बोल अते उसकी सुंदर पगरी दा वर्णन भी गुरबाणी विच उपलब्ध हुंदा है। भगन नामदेव जी राग तिलंग विच रूपमान करदे हन। बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ। खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे के मुगोल। रंग रतड़े प्रभु प्यारे लई अपने प्रीतम दी शोभा सदा ही नवीन अते मन मोह लैण वाली ही दृष्टि गोचर हुंदी है। ओ उसकी प्रशंसा ते वडियाई तो बलिहार जांदा है। बंधन काटनहार अते प्रितपालक प्रभु प्रीतम दी शोभा दा कोई भी पारावार नहीं है। ओ अगम अगोचर बेशुमार बेअंत स्वामी ते वड्डा गोविंद है। श्री गुरु रामदास जी राग आसा विच कृपा करदे हन। वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आद निरंजन निरंकार।

0: हर जियो ताकि गत कही ना जाई अमित वड्याई मेरा गोविंद अलख अपार जियो। गोविंद अलख अपार अपरंपर आप अपना जानै क्या ए जंत विचारे कहीऐ जो तुद आख वखाणै। प्रभु प्रीतम अजिहा सुल्तान है जिस दे वस सारा जहान है। वह करता पुरख है उसका सर्वश्रेष्ठ दरबार है। गौड़ी ग्वारेरी विच पंचम पातशाह जी वर्णन करते हैं सब ते ऊच जाका दरबार सगल भगत जाका नाम आधार सर्वव्यापत पूरन तनी जाकी शोभा घट घट बनी। सच्चे प्रीतम की शोभा दिनों दिन सुहावनी ते नीकी है। प्रभु प्रीतम दे मिलाप नाल सुख उपजदे हन अते दुख दूर हुंदे हन। अजेहे मिलाप नाल आनंददायक अवस्था दी प्राप्ति हुंदी है जिस नाल जीव दा समुच्चा जीवन खुशियां अते खेड़िया नाल भरपूर हो जांदा है।
1: प्रिय की सोब सुहावनी नीकी ये वार्ता सुना रहे सन जोगिंदर सिंह कंग। वो अकाल पुरख परमात्मा सब तो सोना है, सृष्टि का मालक है, मना नू मोहन वाला है, प्राणा का आसरा है, साड़ी जिंद ते जान है। वो प्रभु आप ही हिरदे विच वसदा है। मन उस परमात्मा दी लीला वेख के विस्मादित हुंदा है, उस दे अचरज कौतक वेख के हैरान भी हुंदा है। मोहन प्राण मान रागीला बास रहे हो हियरे कै संगे पेख मोहे हो मन लीला। सरवण करदे हां भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया

मोहन प्राण मान रागीला, बास रहे हो हियरे कै संगे, पेक मोहयो मन लीला। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में

शास्त्री संगीत प्रोग्राम सुर साधना च अज सुनोगे शास्त्री गायन ते राग बिहाग कलाकार होणगे B.S. नारंग। रात 10:30 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम सरगम। अज प्रोग्राम तुसी सुनोगे साडे न्यूज़ ऑन एयर AIR ऐप तो, क्योंकि 10:30 बजे तुसी अज सुनोगे साडे बाकी चैनल ते उपर, यानी कि DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स, FM 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर तो, इंग्लैंड ते दक्षणी अफ्रीका विच खेडे जाण वाले ICC वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप दा सैकेंड फाइनल मैच दा सीधा प्रसारण तुसी सुनोगे। रात 11 बजे तुसी सुनोगे समाचार हिंदी च दिल्ली केंद्र तो, 11:05 ते समाचार अंग्रेजी च। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ।

0: आकाशवाणी जलंधर तो सुनो, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर, सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं, आ हुण सुनदे हां देश गान।

0: आप भी भारतीय नौसेना युद्ध तत्पर विश्वसनीय सुगठित और भविष्य के लिए तैयार बल का हिस्सा बनिए। अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से अग्निवीर SSR और MR एवं अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों से SSR मेडिकल के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 10 अप्रैल 2025। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in।
1: पुलिस
2: मिस सीमा।
1: हाँ जी।
2: हुणे पुलिस थाने आओ। रुको, नहीं तां कारा जावांगे। हाँ
1: क्यों? पर मैं
2: निकले दूजे कमरे विच जाओ। तुहाडा बेटा साडी हिरासत विच है अते तुसी डिजिटल अरेस्ट विच हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दियो, बच जाओगे।
1: इन्ने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजा है, उन्हें प्रोसेसिंग लिए 30,000 दियो, नहीं तो बेटा जेल जावेगा।
1: जेल तो तू जावेगा, तेरा चेहरा रिकॉर्ड हो गया है।
2: ओए,
1: डिजिटल अरेस्ट जेहा कुछ नहीं हुंदा, ये सब फ्रॉड है, इसलिए घबराओ ना। पुलिस, बैंक, RBI आदि दे नाम तो आने वाले साइबर अपराधियों दे फोन कॉल या वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नू पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नू रिपोर्ट करो।
3: हेलो मम्मा।
1: हाय।
4: RBI कहिंदा है
1: जानकार बनो, सुचेत रहो।
5: आकाशवाणी जलंधर केंद्र तो तुसी इस वेले सुन रहे हो देश कान।

दोस्तों अज का जिहड़ा समा चल रहा ना वो है पैसे का। कहिंदे जिधर पैसा है रिश्ते भी उधर चले जाते हैं। रिश्ते पैसे नाल नहीं विश्वास नाल चलते हैं। जे किसी का दिल जितना है तो उसकी इज्जत करो। पैसा अज है कल नहीं है, हाथ की मैल है, कदों चला गया पता भी नहीं चलता। इसलिए जिहड़े रिश्ते है रिश्ते हमेशा कोल रहिंदे ने। इन्हां नूं गवाओ ना सिर्फ पैसों करके। मिठे बोल वो दौलत ने जो खर्च करन नाल होर वधदी है। इसलिए हमेशा मिठा बोलो ते अपने रिश्ते कमाओ। आओ अगला गीत सुनते हैं। आवाज़ दिती है कैलाश खेर ने।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्ज्वल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरलम में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवा

0: और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जाँच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special.

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY, इसे हम कह सकते हैं कि ये योजना खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन का एक दशक पूरा कर चुकी है। PMKSY ने पिछले एक दशक में समूचे भारत में सिंचाई अवसंरचना को मजबूत करने और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। ये योजना 64,407 करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्रीय सहायता के साथ खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन के प्रमुख उत्प्रेरक के तौर पर उभरी है और 2.7 करोड़ से भी अधिक किसानों को अब तक लाभ पहुंचा है और 2.46 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई क्षमता पैदा की गई है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने देश के किसानों का

0: भविष्य उज्जवल किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी मौजूद हैं। हरवीर जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद हर्ष जी।
0: आपसे पहला सवाल यही हम जानना चाहेंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और देश की कृषि व्यवस्था में ये योजना पिछले एक दशक में किस तरीके का परिवर्तन लेकर आई है?
1: हर्ष जी देखिए, कृषि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक इनपुट है वो सिंचाई है। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप कोई भी फसल उगाने के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं और अपनी तैयारी के साथ खेती कर सकते हैं। तो कृषि जो है वो एक तरीके से खेती करने के लिए, अगर हम ये कहें जो सिंचाई है वो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। और इसीलिए क्योंकि अभी भी जो हमारा टोटल जो जिसे हम कहते हैं कि जिस क्षेत्रफल में खेती होती है उसका लगभग आधे से थोड़ा कम जो है, एक दशक पहले जो करीब 45% के आसपास था उससे भी कम था, वो वर्षा आधारित था। तो यानी कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है, जो उसकी हमें एक उम्मीद है कि कितना उसके अंदर संभाव्यता है, उसको हम पूरा उपयोग नहीं कर सकते थे अगर हम सिंचाई की सुविधा ना बढ़ाएं। तो पहला फोकस जो रहा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य रहा है, वो देश के किसानों को उनकी खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है वो मुहैया कराने का उद्देश्य इसके पीछे रहा है, क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें आगे शुरू होती हैं। और उसमें एक मल्टीप्रॉन्ग अप्रोच जिसे कह सकते हैं हम लोग, एक साथ इसके बहुत सारे घटक हैं इस योजना के
0: जी,
1: उनको सब पर काम किया गया है। और उसके नतीजे जो आपने जैसे कहा कि एक दशक में 2016-17 के बजट से लेकर के और अभी तक हमने 64,407 करोड़ रुपए का आवंटन सिंचाई के लिए इस योजना के तहत किया है। और उसका नतीजा यही रहा कि करीब जो 24.61 मिलियन हेक्टेयर जो है वो जमीन हम अतिरिक्त सिंचाई के तहत ला पाए, जिसका फायदा 2.5 करोड़ से ज्यादा देश के किसानों को हुआ।
0: सरकार ने एक लक्ष्य बनाया कि प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ये चीज सामने आई जिसका फायदा भी किसानों ने और हमारे फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ने उठाया। ये प्रति बूंद अधिक फसल, इसे कैसे आम श्रोताओं के लिए आप समझाएंगे?
1: एक तरीके से जो हम कहें कि जो स्लोगन भी बनाया गया, पर डोप मोर क्रो, यानी कि हर बूंद से अधिक उपज, का मतलब है कि जो हमारे पास जल उपलब्ध है, जो संसाधन हमारे पास सिंचाई के उपलब्ध है, उनको हम कितना दक्षता के साथ उपयोग कर सकते हैं ताकि हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं उत्पादन में फसल के, वो हम आकलन कर सकते बेहतर उत्पादन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, और जो एक्सटेंशन वर्क है जिसमें किसान को बताना है, समझाना है कि जो पानी है एक तरीके से बहुत ही बहुमूल्य रिसोर्स है, उसका आप बेहतर दक्षता के साथ उपयोग करके अधिक उपज कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो जो भी कंपोनेंट है उनको केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ा गया। तो इसीलिए जो स्लोगन है पर डॉप मोर प्रो, प्रति बूंद अधिक उपज, हम लोग उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है वो कदम इस योजना के तहत उठाए गए।
0: हरवीर जी, आपने मानसून आधारित यानी वर्षा आधारित सिंचाई की भी बात की, तो एक हम इसे कैसे समझें आम श्रोताओं के हिसाब से? एक तो जब वर्षा होती है तो हर खेत को पानी पहुंचता है, लेकिन फिर उसके लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आंकड़े क्या बताते हैं, अभी देश में कितने एरिया ऐसे हैं जहां वर्षा आधारित कृषि है और कितने एरिया हम मान के चले ऐसे हैं जहां के लिए हम सिंचाई की सुविधा देते हैं जो वर्षा पर आधारित नहीं है, वर्षा हो ना हो वहां सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा?
1: हमारा सिंचाई का जो ढांचा है जो बहुत वर्षों से है, जैसे कि हम लोग कैनाल सिस्टम है, ट्यूबवेल सिस्टम है और डैम बनाए गए हैं, चेक डैम्स हैं, तो ये एक जो पॉन्ड्स हैं, जो तालाब हैं बड़े, उनका रेस्टोरेशन है, बहुत सारी चीजें उसके साथ में है। लेकिन जो कैनाल इरिगेशन और हम जो कहते हैं कि भाई जहाँ ट्यूबवेल सिस्टम है, वो सारा जो हम कहते हैं इसको एश्योर्ड इरिगेशन, यानी कि बारिश हो ना हो लेकिन किसान के पास एक वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग करके वो अपने खेतों की सिंचाई करके फसल का उत्पादन कर सकता है। और इसलिए जो बहुफसलीय जो उत्पादन क्षेत्र है वहां पर किसानों की स्थिति भी अच्छी होती है, उत्पादन भी ज्यादा होता है, कि जो फसल चक्र उसका है वो रबी है, खरीफ है, जायद है, वो सारी चीजें उसमें हासिल कर सकता है क्योंकि उसके पास सिंचाई की सुविधा है। ये इस तरीके का जो हमारा क्षेत्रफल है वो 50% से थोड़ा ज्यादा है। बाकी जो है हमारा जो कृषि है वो हम कहते हैं कि वर्षा आधारित है, हालांकि वह काफी बड़े पैमाने पर वहां पर भी किसानों ने अपने स्तर पर और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका उपयोग करके सिंचाई की सुविधाएं हैं।

0: इसको हम रेनफेड एरिया बोलते हैं। रेनफेड एरिया में अक्सर जो है एक फसली खेती होती है, और वो जब ये हमारा मानसून का सीजन होता है उस वक्त ये खेती होती है। लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं कि हर वक्त बारिश हो, तो सरकार की जो योजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका एक कंपोनेंट है वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में होता क्या है कि उस तरीके के सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा करने के एक ढांचे बनाए जाते हैं, चेक डैम्स बनाए जाते हैं, कि जो रेनफेड एरिया है वहां पर एक सिंचाई उस क्षेत्र में हो जाए जब कमी पड़ती है उस वक्त, या जो पानी अगर बच जाएगा तो उससे आप दूसरी फसल के लिए भी पानी उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये एक काफी बड़ा काम है और देश भर में इसके ऊपर सरकार ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर। और इससे क्या हुआ कि जो इलाके ऐसे हैं जो कृषि में थोड़ा पिछड़े हुए हैं उनको बाकी क्षेत्रों के करीब लाने की कोशिश कामयाब होती है, क्योंकि वहां के किसानों को उनका जो कृषि से जो आय है उसमें इसके जरिए सुधार किया जाना संभव है और हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। ये वहां पर जो पॉन्ड्स है उनका रेस्टोरेशन होता है कि जिससे जब पानी की जरूरत है तो वहां से पानी किसान ले सके, और बहुत जगह यूजर एसोसिएशंस बनी हुई है किसानों के, अपने एक तरीके से कलेक्टिव बने हुए हैं जो मिलजुल कर उसका मैनेजमेंट भी करते हैं और आपस में उस पानी का बंटवारा भी करते हैं, जिससे सबके साथ एक इक्विटेबल जो है रिसोर्सिस का इस्तेमाल हो सके। तो ये इस योजना के ऊपर। और इससे क्या हुआ कि जो इलाके ऐसे हैं जो कृषि में थोड़ा पिछड़े हुए हैं उनको बाकी क्षेत्रों के करीब लाने की कोशिश कामयाब होती है, क्योंकि वहां के किसानों को उनका जो कृषि से जो आय है उसमें इसके जरिए सुधार किया जाना संभव है और हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। ये वहां पर जो पॉन्ड्स है उनका रेस्टोरेशन होता है कि जिससे जब पानी की जरूरत है तो वहां से पानी किसान ले सके, और बहुत जगह यूजर एसोसिएशंस बनी हुई है किसानों के, अपने एक तरीके से कलेक्टिव बने हुए हैं जो मिलजुल कर उसका मैनेजमेंट भी करते हैं और आपस में उस पानी का बंटवारा भी करते हैं, जिससे सबके साथ एक इक्विटेबल जो है रिसोर्सिस का इस्तेमाल हो सके। तो ये इस योजना का एक बड़ा कंपोनेंट मैं मानता हूँ, और इसको काफी बड़ा बल मिला है। जो एक रेनफील्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बड़े पैमाने पर इसके ऊपर काम भी करती रही है। तो ये तभी संभव हुआ है जब उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: हरवीर जी, आप ये भी बताएं कि जो ये अवसंरचना विकास है सिंचाई के लिए, ढांचागत विकास है, उसमें क्या नवीनता आई है समय के साथ साथ? जैसे अब तो हम हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो सिंचाई में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है और ढांचागत जो विकास हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं?
0: इसका एक कंपोनेंट है एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP भी जिसको बोलता है।
1: जी
0: वो प्रोग्राम ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं लंबे समय से उनका जो लास्ट माइल कंप्लीशन है, यानी कि जो प्रोजेक्ट 80% पूरा हो गया या 90% पूरा हो गया, उसमें अगर 10% काम बचा तो उसको तेजी से पूरा किया जाए, उसके लिए अलोकेशन किया जाए, और उसके पूरा होते ही उसका जो पोटेंशियल है, जो उसके जरिए जो एक संभावना है या कितना क्षमता का हमने उम्मीद रखी है उसके सिंचाई की जो उससे पैदा होगी उसका उपयोग तुरंत हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कंपोनेंट रहा है, और इसके ऊपर जो है करीब 21,000 करोड़ रुपया जो है इसके लिए अलोकेट हुआ, और बड़े पैमाने पर इससे करीब 173 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उसको सिंचित सुविधा की तरह हम दे पाए। प्लस जो माइनर इरिगेशन है, जैसे मैंने आपको चेक डैम की बात की थी, या माइनर इरिगेशन है वो सब हुआ। साथ में जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने कहा कि जब मैं कहूँ कि प्रिसीजन इरिगेशन जो है कि आपको माइक्रो इरिगेशन की जो स्कीम्स है कि भाई आप स्प्रिंकलर है, आपके ड्रिप इरिगेशन है,
1: जी
0: जिससे आप सिंचाई के साथ आप न्यूट्रिशन भी पौधे तक सीधे पहुंचा सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है और आपकी लागत घटती है। और ये जो स्कीम्स हैं जिसमें हम, मैं कह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी का जहाँ इस्तेमाल हुआ है, इस तरीके की इरिगेशन की जो नई चीजें नई पद्धतियां लागू की गई हैं, उससे बहुत कम पानी में, कई जगह 1/4 पानी इस्तेमाल होता है फ्लड इरिगेशन के मुकाबले इसमें, या उससे भी कम होता है, लेकिन जो उपज है वो बेहतर होती है, उत्पादकता बेहतर होती है। जो ड्राई लैंड एरिया जैसे कि राजस्थान है, गुजरात का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा है, वहां पर इस तरीके की जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सिंचाई सुविधाओं के ऊपर काम हुआ है, क्योंकि इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है और उस सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है।
1: जी
0: जैसे आपने कहा कि पहले से जो हमारा कैनाल इरिगेशन था, जो बड़े पॉन्ड थे या लेक्स थे का जो है वहां से जो पानी का हम इस्तेमाल कर पा रहे थे नहरों के जरिए, तो लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें अगर ट्यूबवेल सिस्टम भी है तो वहां पर भी आप जो है बोरवेल में वहां पर भी ये आप उसको आगे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जहां पानी का स्तर ऊपर था वहां पर बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल्स जो है उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए, उसका इस्तेमाल हुआ। और जो जो सिंचित, जैसे हम ईस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं, वहां जो सिंचित एरिया बढ़ाने की बात है, उसमें ये काफी मददगार हुई है स्कीम्स इस तरह की। इवन राजस्थान में बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रिसिशन जो इरिगेशन की हम बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, प्लस सोलर पंप्स के जरिए, छोटे पंप्स और सोलर के जो एनर्जी, जहां बिजली की भी जरूरत नहीं है, ये सारा चीजें तभी हो पाई है जब आपने एक बहुत वृद्ध स्कीम बनाई और
1: जी
0: उसमें हर कंपोनेंट को रखा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डैम बनाएंगे और इरिगेशन के लिए चैनल्स बनाएंगे, नहीं, जो भी उपलब्ध एक तरीके से विकल्प है उन सबको एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की।
1: हरवीर जी, आपने बहुत सही बताया कि किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल कर और स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर किसानों ने अपनी फसल को बढ़ाया है, अपनी आय बढ़ाई है। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के किसानों ने स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाकर पानी, बिजली और श्रम की लागत काफी कम कर दी, अपना उत्पादन बढ़ाया। और आपने राजस्थान की भी बात की कि जहाँ किसानों ने कम पानी के बावजूद अपना उत्पादन बढ़ाया है। साथ ही आपने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP के माध्यम से भी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को किस तरीके से सरकार ने पूरा किया है, इस पर भी बातचीत की। अब आप हमें ये बताएं कि सरकार खास तौर पर, विशेष रूप से अगर कहें, छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए 55% तक की सहायता देती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले सब्सिडी की भी बात की, इससे किसानों की

0: आय और खेती पर पिछले कुछ वर्षों में क्या प्रभाव पड़ा है?
1: ये जो छोटे किसान होते हैं उनके पास संसाधनों की कमी होती है, उनके पास जो वित्तीय संसाधन है वो बड़े किसानों की तरह उपलब्ध नहीं होते कि वो इन्वेस्टमेंट करके सिंचाई सुविधाओं पर तुरंत अपने लिए सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ पर जो सरकार ने सब्सिडी मुहैया कराई है, जो कंपोनेंट जो लागत आती है उसका बड़ा हिस्सा जो दिया है, और इसमें कोशिश ये हो रही है कि ये जो सुविधाएं विकसित हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो, जिससे कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी, जो यानी कि पानी के उपयोग की जो दक्षता है, जो हम लोग पीछे कह रहे थे कि पर लोग मोर क्रॉप जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे अक्वाफर हो या और पॉन्ड्स उनको कैसे रिचार्ज रखा जा सकता है।
0: जी
1: मेरा अभी भी मानना है कि अभी इस तरीके के जो किसान है हमारे देश में, अभी भी जो लघु और सीमांत किसान है उनकी हिस्सेदारी करीब करीब 88-89% के बीच में चले गए। जोत का जो आकार है 2 हेक्टेयर से कम जमीन के जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनको अभी एक तरीके से जो एक्सटेंशन है, जो उन तंत्र सूचना का है कि उनको कैसे हम शिक्षित करें, कैसे उनको हम इसके लिए तैयार करें कि वो इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लेकर के, और जो कृषि जो वो खेती करते हैं उसमें अपने उपज बेहतर कर सके, अपने जो आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके, अपनी ज्यादा फसल करके ज्यादा आय हासिल कर सके, क्योंकि स्कीम्स अवेलेबल है उसमें बड़े पैमाने पर। अभी भी जरूरत यह है कि जो लिंकेज हैं उनको कैसे हम जोड़ें, किस राज्य की क्या स्कीम है,
0: जी
1: कहाँ से उनको ये उपकरण लेने हैं, उसके खेत के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है, तो ये उनको अभी और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत
0: जी और हरवीर जी, यहाँ यह भी बताते चले कि केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 6,587 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और यह दर्शाता है कि सरकार जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को किस तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हरवीर सिंह जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

मोहम्मद रफी की आवाज़ सुन रहे सी मस्त बहारों का। आओ अगला गीत सुनते हैं, आवाज़ दिती है आशा भोंसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन ने। ते गीत दे बोलने बच के रहना रे बाबा।

बच के रहना रे बाबा, सुन रहे से ये गीत आशा भोसले, किशोर कुमार ते राहुल देव बर्मन की आवाज़ दे विच। आओ अगला गीत सुनते हैं। आवाज़ दिती है अलका याग्निक ते कुमार सानू ने। गीत दे बोल ने परदेसी परदेसी।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया।

0: उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, "When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits." He said, "Both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound." The Prime Minister said, "India and Japan today reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless."
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, "Among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas." Ms. Takaichi said, "Through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action." On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. India and Japan today agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both the sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months,

बमिनता कर दिया अमीद आजाया वे सोनिया वीरा अज खाली मोड़ीरा भैन नू दर तो वेखा नशमीरा भैन मार मिर्जे नू।

0: हेलो,
1: श्रीकाल
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: जी, मैं बंसी लाल हाँ जी, पिंड तेजा मोड़ी जिला अंबाला जी।
0: क्या बात है जी, होर सुनाओ बंसी लाल जी, की हाल चाल है तुहाडे?
1: हाल बल्ले बल्ले ठंड हो रही है, मौसम ठंडा हो गया।
0: सर्दियां आ गई है ना जी?
1: अज मौज हो गई।
0: ठीक है जी, ते गीत दी फरमाइश दस दो जी, गीत केड़ा प्ले
1: गीत जेड़ा मर्जी ला दो, गुरदास मान दा।
0: जरूर सुनावांगे जी। फोन करने
1: हाँ
0: लिए
1: जी, हाँ,
0: शुक्रिया जी।
1: थैंक यू जी, थैंक यू।

0: आपके तक यहाँ की
1: जी
0: मिठास जो जमीन देती है, दुनिया में कहीं भी ऐसी शक्कर और गुड़ नहीं बनता।
1: जी जी
0: सही बात है जी।
1: चंद गुण बनता है सर हमारे यहाँ।
0: बर्फी बोलते हैं उसे, है ना, बर्फी या
1: जी
0: लड्डू।
1: जी जी खेती ज्यादा करते हैं सर हमारे यहाँ, मुरादाबाद काफी दूर है, तो मुरादाबाद वाला जो फेमस काम है वो गांव में नहीं है।
0: तो और मौसम कैसा है इस समय आपका दूलापुर में?
1: मौसम सर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन कल और आज ऊपर वाले ने अच्छी मतलब बारिश पड़ गई, तो ठंडा मौसम होगी सर।
0: अब और ठंडक पड़ जाएगी जब सभी दोस्त सुनेंगे आपकी फरमाइश का गीत। और फरमाइश भी बता दीजिए।
1: करमजीत अनमोल का कोई भी गीत सुना दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे सर।
0: फोन करने के लिए शुक्रिया जी।
1: सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी।

0: फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांधा, इंदरजीत कौर बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा ते जी एस रामगढ़िया, पिंड खाने की ढाब मलोड़ तो शमशेर सिंह कोलधर, जसविंदर कौर, करण प्रताप सिंह, मनमीत कौर, तरनवीर ते मनताज। होल्ड करो जी। हेलो
1: सर, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। शरण फरमाइश दस दो शरण जी।
1: हां जी,
0: गीत केड़ा सुनोगे जी?
1: सर गीत सुना दो मास्टर सलीम की आवाज में।
0: मास्टर सलीम दी आवाज च सुनाने हैं जी। फोन करने लिए शुक्रिया जी।
1: कांता वर्मा बोली जी,
0: हिमाचल प्रदेश। कांता वर्मा शिमले दे कोल कसोली तो जी।
1: हां जी हां जी,
0: ठीक है जी। ते गीत सुनाने हैं जी मास्टर सलीम दी आवाज च। फोन करने लिए शुक्रिया जी।
1: थैंक यू सर जी।

मलोड़ तो जगतार गिल, परमजीत कौर गिल, गैवी गिल, अमनदीप गिल, सुखबीर सिंह छाजली तो, बुरज सिद्धवा मलोड तो, सरबजीत सिद्धू, अविताज सिद्धू, जगतार जग्गा धौला किंगरा तो, बागा पुराणा तो सतनाम सिंह रखड़ा, अमरजीत कौर रखड़ा, तेग फतेह सिंह ते जसगुन रखड़ा, हरदीप सिंह, जगवीर सिंह, ज्वाला सिंह, डॉक्टर धर्मवीर चोरड़, गुरसाहिब सिंह, ये सब है जी पिंड राजपुरा दी पंचायत वालों जी। मुक्तसर तो बाबू सिंह तिमान, बलजिंदर कौर तिमान, रवनीत, नीशु ते भुपिंदर, इन्हां सारे दोस्तों की मिली जुली फरमाइश हंसराज हंस की आवाज़ च जिंद

प्रोग्राम की अगली पेशकश जट की पसंद जुगराज संधु की आवाज़ च ते फरमाइश करन वाले दोस्त मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना तो विनोदपुरी वीपी रंजू अशोक सुशील बीकेपुरी कैलाश अनीता ममता मेघा पूजा गगन कपूर गुंजन कपूर ते लालसा कपूर रमा मलिक कुणाल निधि हरीश सतीश राकेश विनोद पाली डीसीपुरी ते अरुणपुरी बठिंडा रोड डब वाली तो राजेंद्र नारंग अंजू नारंग ते मोहित नारंग।

इरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बाणी चिर हुआ देखे सारिंग पाणी तन सुदेश जहां तू वस्या मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। जीव रूप स्त्री हमेशा प्रभु दे दर्शन दीदार दी त्रिहाई हुंदी है। जीव रूप स्त्रियां प्रभु दे संपर्क विच रह के उसकी महिमा बयान करना ही लोचदिया हन। भगत रविदास जी उस अकाल पुरख के चरणों विच बेनती करते ने कि हे प्रभु जीओ तुसी दयालु हो असी दीन हाँ कृपा करो मैं बहुत जन्मों तो आप जी तो विछड़िया होया हाँ मैनू

अपने दर्शन दीदार बख्शो। आप अबोल क्यों हो, मैं आप जी तो सदके जांदा हां। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या की जाए। बचनी तोर मोर मन माने, जन कौ पूरन दी जाए। सरवण करदे आ भाई गुरमेल सिंह ते उन्हां दे रागी जथे वालों गायन कीता होया ये शब्द।

हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या की जाय। बचनी तोर मोर मन माने, जन काओ पूरन दी जाय। इस शब्द अगैन

0: हाउ वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोका काहे का मारे। इस शब्द का गायन किया सिपाही हरचंद सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी बलविंदर सिंह।
1: यह पावन शब्द राग आसा अंदर भगत कबीर जी का उचारण किया होया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे मुबारक अंग 484 उपर अंकित है। भाव है, हे प्यारे प्रभु, मैं तैथों कुर्बान हाँ, मेरे वल तक मैनू पिठ दे के क्यों मार रहा है। जे तू मेरे वल मेर दी नज़र ना करें तो मैं ज्यों नहीं सकता। जिन्हां नू प्यारे नाल प्रेम लग जाता है उस प्यारे तो बिना रह नहीं सकते। मारू राग अंदर दखने सरलेख अधीन एक पंचम पातशाह जी का श्लोक है। तू चौ सज्जन मैंडिया डेई सिस उतार, नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदार। भाव है, हे मेरे सज्जन, जे तू आखें ता मैं अपना सिर पी ला के भेट कर दिया। मेरिया अखां तरस रही हन, मैं कदों तेरा दर्शन करा। प्यारे प्रभु दी प्रीत जिन्हां नू लग जांदी है वह दिन रात उस प्यारे प्रभु दी याद अंदर जुड़े रहिंदे हन। उन्हां दे अंदरों प्यारे दे प्रेम दी तृष्णा बुझदी नहीं है। प्यारे प्रभु दे प्यारे संत जन रस विच लीन रहिंदे हन, प्रीत विच गह गुच होए जुड़े रहिंदे हन। उन्हां अंदरों नाम सिमरन दी इच्छा मुकदी नहीं, होर वधदी ही जांदी है। श्री गुरु अंगद देव जी श्री राग दी वार अंदर एक श्लोक बख्शिश करदे हन, जिस अंदर सतगुरु प्यारे प्रति अत स्नेह अते बैराग नू वर्णन करदे हन। कुछ साखी कर लिखदे हन कि जिस समय श्री गुरु नानक देव जी गुरता गद्दी श्री गुरु अंगद देव जी नू दे के ज्योति जोत समा गए, इस तों बाद दूजे पातशाह गुरु अंगद देव जी ना संगत नू मिलदे ना वचन बलास करदे सन। अपने निज आसन ते बस श्री गुरु नानक देव जी दे विछोड़े अंदर उन्हां दी याद विच ही बैराग दे हंजू वहाउंदे रहिंदे। एक दिन कुछ संगतां नू नाल लैके

हर जियो सदा तेरी सरणाई, जो पावे त्यो राखो मेरे स्वामी, ए तेरी वडियाई। इस शब्द का गायन कीता सी डॉक्टर जगीर सिंह होरां।

अंग संग पयो सायर तिन शब्द सूरत की नींव रखाई। गुरु अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही ना जाई। सोडी सृष्ट सकल तारन को

अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसमदी नूर अरसो पुरसो झटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरशां दशा हो।

हम मूड मुगद सदा से पाई, गुर के शब्द प्रगासा हर जियो, तुम आपे देहो बुझाई हर जियो, तुद विट्टहों वारिया सदही।

हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले पाई, शब्दे ही मुक्त पाई, शब्दे मन तन निर्मल होआ, हर वस्या मन आई, शब्द गुरदाता जित मन राता,

अवर न दूजा कोई, अपि कर विखै मार्ग लाए पाई, तिस बिन अवर न कोई, जो तुर लिखिया सो कोई न मिट पाई, करता करे सो होई।

जान सुब्रह्मं कर्मं सफोकुतनेचो कर्मं कहो नानकनेचो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावे।